महड गावाती महसूर वरद विनायकाच तीत एक मंदिर मंदिर लय साध सुध जस

0: यह दोहा अनन्य निष्ठा और संसार की व्यर्थता को बड़े ही सटीक ढंग से रेखांकित करता है। इसमें वह बता रहे हैं कि दुनिया इच्छाओं का अंत केवल प्यास और निराशा से होता है। क्यों? क्योंकि संसार का पानी खारा है, वह प्यास बुझाता नहीं और बढ़ाता है। आप जितना भागेंगे उतनी ही इच्छा और बढ़ेगी। इसे ऐसे समझिए कि जैसे कोई समंदर के बीचों बीच फंसा जहाजी प्यास से तड़प रहा हो। पानी तो चारों तरफ है पर वह पीने लायक नहीं है। ठीक वैसे ही हम सुखों के बीच तो हैं पर हमारे मन की तड़प खत्म नहीं हो रही। श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, आशा जो एक राम की। इस जीवन में अगर कोई उम्मीद सचमुच फलदायी है तो वह केवल उस एक परमात्मा की है, उस राम की है जो शाश्वत है। दूजी आस निराश। इसके अलावा आप संसार में जिससे भी आस लगाएंगे अंत में निराशा ही हाथ लगेगी, चाहे वह धन हो, पद हो या देह के रिश्ते। अगली पंक्ति में वे एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण देते हैं। पानी माहे घर करें ते भी मरे प्यास। वे उन लोगों की बात कर रहे हैं जो संसार रूपी सागर के बीच अपना घर बनाए बैठे हैं, जो विषय विकारों और सुख सुविधाओं के पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन फिर भी वे प्यासे ही मर जाते हैं। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी उम्मीदों की लिस्ट देखिए। आपने अपनी खुशियों की चाबी किसके हाथ में दे रखी है? किसी इंसान के हाथ में, अपनी नौकरी के हाथ में या समाज की वाहवाही के हाथ में? याद रखिए, जहां परिवर्तन है वहां निराशा निश्चित है। आज कोशिश कीजिए अपनी आस का केंद्र बदलने की। अपनी उम्मीदों को उस एक परमात्मा से जुड़िए जो कभी बदलता नहीं। जब आप उस परम सत्य से जुड़ते हैं तो संसार की खारी लहरें आपको परेशान नहीं करती। प्यास बुझानी है तो अमृत पीजिए। खारे पानी से तो सिर्फ हलक सूखेगा। आज अपनी आत्मा की प्यास को पहचानिए और सही कुएं की तलाश कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका। रेडिओ मन भावन 90.8 FM, अलवेज हार्ट टचिंग।

0: की एक भंवरे की निगाहों से चमक जाती है बिजली खुद ही इन गहरी घटाओं से। बरस पड़ती है शबनम आप ही ठंडी फिजाओं से। जा जा
1: अरे जा जा
2: जा

0: है ये बेअदब कनीज़ो।
1: बेअदब जरूर है लेकिन शेर अच्छा कहा है। खातून आगे आओ। माँ बदौलत ने अब तक सिर्फ तुम्हारा खूबसूरत शेर सुना है, तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। कौन हो तुम?
0: आपकी कनीस अर्जुमन बानो।
1: अर्जुमन बानो? आसिफ खान की साहिबजादी, मिर्जा कयास की पोती। सुभान अल्लाह, ई खाना हम आफ्तावस। हमने तो समझा था इस बहरे हुसन का सबसे चमकदार मोती हमने हासिल कर लिया है, लेकिन अब भी इसमें ऐसे ऐसे दुरे नायाब मौजूद है। अर्जुमन, तुमने एक शेर पढ़कर हमारी आतिश शौक को भड़का दिया है, हम पूरी गजल सुनना चाहते हैं। बैठ जाओ।
0: जो हुक्म आली जाए।

अल्लाह क्या परवाज है, क्या रवानी है, क्या बेपनाह शेर कहा है, बखुदा जादू है जा।

0: ओहो, ये तो परियों की रानी है।
1: अब तुम जा नहीं सकती, चाहे रात गुजर जाए सुबह हो जाए, अब तुम्हें भी इनके साथ नृत्य करना पड़ेगा मेरी परियों की रानी।
2: और साथ साथ नशीला गाना।

सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

टाइफूनी रात में मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी होती रातों में जागी सी

0: भेजा सरकार
1: ने। थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: ये क्या बदतमीजी है?
1: बदतमीजी तो तुम कर रहे हो। क्या एक शरीफ लड़की से इस तरह बात की जाती है?
0: कह दो ये सब झूठ है।
1: क्या झूठ है?
0: यही कि तुमने मुझसे बेवफाई की है।
1: हमसे वफा की उम्मीद? हम नहीं जानते वफा क्या है।
0: लैला,
1: मेरा नाम लीला है।
2: Any problems, darling?
1: No problem, darling.
2: No problems?
1: No.
2: Then come on, let's go and dance.
1: Let's dance.

0: हैंडसम
1: एपिसोड 57। नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका। अंत में सिर्फ दुख और देती हैं हम जिन रिश्तों और जिन चीजों से आशा की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं तो किसी जगह रास पानी माँ है घर करें ते भी मरे प्यास। आस

0: यह दोहा अनन्य निष्ठा और संसार की व्यर्थता को बड़े ही सटीक ढंग से रेखांकित करता है। इसमें वह बता रहे हैं कि दुनिया इच्छाओं का अंत केवल प्यास और निराशा से होता है। क्यों? क्योंकि संसार का पानी खारा है, वह प्यास बुझाता नहीं और बढ़ाता है। आप जितना भागेंगे उतनी ही इच्छा और बढ़ेगी। इसे ऐसे समझिए कि जैसे कोई समंदर के बीचों बीच फंसा जहाजी प्यास से तड़प रहा हो। पानी तो चारों तरफ है पर वह पीने लायक नहीं है। ठीक वैसे ही हम सुखों के बीच तो हैं पर हमारे मन की तड़प खत्म नहीं हो रही। श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, आशा जो एक राम की। इस जीवन में अगर कोई उम्मीद सचमुच फलदायी है तो वह केवल उस एक परमात्मा की है, उस राम की है जो शाश्वत है। दूजी आस निरास। इसके अलावा आप संसार में जिससे भी आस लगाएंगे अंत में निराशा ही हाथ लगेगी, चाहे वह धन हो, पद हो या देह के रिश्ते। अगली पंक्ति में वे एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण देते हैं। पानी माहे घर करें ते भी मरे प्यास। वे उन लोगों की बात कर रहे हैं जो संसार रूपी सागर के बीच अपना घर बनाए बैठे हैं, जो विषय विकारों और सुख सुविधाओं के पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन फिर भी वे प्यासे ही मर जाते हैं। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी उम्मीदों की लिस्ट देखिए। आपने अपनी खुशियों की चाबी किसके हाथ में दे रखी है? किसी इंसान के हाथ में, अपनी नौकरी के हाथ में या समाज की वाहवाही के हाथ में? याद रखिए, जहां परिवर्तन है वहां निराशा निश्चित है। आज कोशिश कीजिए अपनी आस का केंद्र बदलने की। अपनी उम्मीदों को उस एक परमात्मा से जुड़िए जो कभी बदलता नहीं। जब आप उस परम सत्य से जुड़ते हैं तो संसार की खारी लहरें आपको परेशान नहीं करती। प्यास बुझानी है तो अमृत पीजिए, खारे पानी से तो सिर्फ हलक सूखेगा। आज अपनी आत्मा की प्यास को पहचानिए और सही कुएं की तलाश कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका। रेडिओ मन भावन 90.8 FM, अलवेज हार्ट टचिंग।

0: देगी एक भंवरे की निगाहों से चमक जाती है बिजली खुद ही इन गहरी घटाओं से बरस पड़ती है शबनम आप ही ठंडी फिजाओं से जा जा
1: अरे जा जा।

0: है ये बेअदब कनीज़ो।
1: बेअदब जरूर है लेकिन शेर अच्छा कहा है। खातून आगे आओ। माँ बदौलत ने अब तक सिर्फ तुम्हारा खूबसूरत शेर सुना है, तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। कौन हो तुम?
0: आपकी कनीज अर्जुमन बानो।
1: अर्जुमन बानो? आसिफ खान की साहिबजादी, मिर्जा कयास की पोती। सुभान अल्लाह, ई खाना हम आफ्ताबस। हमने तो समझा था इस बहरे हुसन का सबसे चमकदार मोती हमने हासिल कर लिया है, लेकिन अब भी इसमें ऐसे ऐसे दुरे नायाब मौजूद है। अर्जुमन, तुमने एक शेर पढ़कर हमारी आतिश शौक को भड़का दिया है, हम पूरी गजल सुनना चाहते हैं। बैठ जाओ।
0: जो हुक्म आली जाए।

0: ये तो परियों की रानी है।
1: अब तुम जा नहीं सकती, चाहे रात गुजर जाए सुबह हो जाए, अब तुम्हें भी इनके साथ नृत्य करना पड़ेगा मेरी परियों की रानी।
2: और साथ साथ नशीला गाना।

दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी विल मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है

0: पीजिए सरकार।
1: कहने था कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

0: ये क्या बदतमीजी है?
1: बदतमीजी तो तुम कर रहे हो। क्या एक शरीफ लड़की से इस तरह बात की जाती है?
0: कह दो ये सब झूठ है।
1: क्या झूठ है?
0: यही कि तुमने मुझसे बेवफाई की है।
1: हमसे वफा की उम्मीद? हम नहीं जानते वफा क्या है।
0: लैला,
1: मेरा नाम लीला है।
2: Any problems, darling?
1: No problem, darling.
2: No problems?
1: No.
2: Then come on, let's go and dance.
1: Let's dance.

0: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार।
1: रेडियो मंधावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: ही है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM RJ शुभंगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: सच है क्या? सब सच है।
1: पैट्रिक,
2: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, RJ शुभंगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

कॉमेडियन के लिए रेडियो मन भवन 90.8 FM RJ शुभांगी सोबत ऑलवेज हार्ट टचिंग ट्यून इन एनीवेयर रेडियो मन भवन 90.8 FM

0: in anywhere. Radio Man Bhavan 90.8 FM, always heart touching.
1: जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी।

0: एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हा हा छोड़ दो अचल, जमाना क्या कहेगा।
0: हा हा हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: ट्यून इन एनीवेयर रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। गाड़ी चलाओ।

0: Tune in anywhere. Radio Man Bhavan 90.8 FM, always heart-touching.
1: अभी सर उठाने का मजा मिल जाएगा, आने दे पुलिस वाले को।
2: पुलिस चौकी यही नजदीक है, कहो तो
3: मैं बुला दूं।

में देते हैं हसीनों को सलामी, यारों का चलन है गुलामी। देते हैं हसीनों को सलामी, गुस्सा न कीजिए जाने भी दीजिए, बंदगी तो लीजिए साहब।

माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना तो माना,

0: सिखा दिया, शुक्रिया तो कीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, RJ शुभंगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो 1 भावन 90.8 FM, ऑलवेज हैड टची।
1: ओ निगाहें मस्ताना देख समा है सुहा।

मलमल के दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के, कहो क्या करे परवाना। कोई देखे नशीली आंखें मलमल के, दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के, कहो क्या करे परवाना। ओ निगाहें मस्ताना देख सम

बचाना मेरे हाथों से, अरमा के गले से लग जाना। जले चांद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना। दामन न बचाना मेरे हाथों से, अरमा के गले से लग जाना। जले चांद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना। ओ निगाहें मस्ताना देख समा।

बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने दे।

के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना। ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना।

0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो मन भावन 90.8 FM, always had touchy.
1: पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी।